इंसान जिस पर रे वो फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंगों में वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रोट जा शेह बाके मुग अब्बा पाप दे मनो के अमल फी की तू बा इटालिया उस तो अल्लाह के बामों ने भी